दिल तो निकली आवाज़ जदों हवावां च घुल जावे फिर रेडियो सिर्फ सुनिया नहीं महसूस भी किया जाता है। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, तुसीं सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मैलबर्न, तुहाडी अपनी होस्ट एंड दोस्त तनु दे नाल। ते वादे मुताबक सोमवार दी सवेर 10 बजे असीं आ गए तुहाडे नाल सांझ पाउण, जिस विच असीं करांगे कुछ अपने दिल दीआं गल्लां ते कुछ तुहाडे दिल दीआं गल्लां। ते इन्हां गल्लां नूं असीं अहसासां दे खंभ लावांगे मिठे मिठे प्यारे प्यारे गीतां दे नाल। तां फिर तैयार हो तुसीं सोमवार दी दौड़ नूं थोड़ा प्यार, थोड़ी मस्ती ते थोड़ियां जिहियां रूहानी वाइब्स देण लई साडे नाल तुसीं। तां हमेशा दी तरह प्रोग्राम दी शुरुआत करांगे असीं इक शब्द तों ते फिर नाल दी नाल अगला सिलसिला जारी रखांगे। सुनदे इक शब्द फिर वापस आने स्टूडियो दे विच।